नमस्कार, मैं हूं आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर। एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियां भी तट पर आ जाती है। जब लहरें पीछे जाती है तो मछलियां किनारे पर ही रह जाती है और धूप से मर जाती है। लहरें उसी समय लौटी थी और स्टार मछलियां अभी जीवित थी। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। वह ऐसा बार बार करता रहा। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो सैकड़ों स्टार मछलियां हैं, तुम कितनों को बचा सकोगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। दो कदम आगे बढ़कर उसने एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब थोड़ा थोड़ा फर्क लाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक दिन बादशाह ने बिरबल से पूछा, पान सड़े घोड़े अड़े विद्या बिसर जाए, अंगारों पर रोटी जले बताओ कोई उपाय। अर्थात पान क्यों सड़ता है, घोड़ा क्यों अड़ता है, विद्या कैसे लोप हो जाती है, अंगारे पर रोटी क्यों जलती है, इसका उत्तर सिर्फ 3 शब्दों में बताओ। बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, फेरा नहीं था। बादशाह ने कहा, साफ साफ बताओ। तो बिरबल बोली, जहांपना, पान न फेरने से सड़ जाता है, घोड़ा फेरे बिना अड़ियल हो जाता है, बिना दोहराए विद्या लोप हो जाती है, और अंगारों पर फेरे बिना रोटी जलकर खाक हो जाती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर पर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालनपुर आरजी अंजलि के साथ। बादशाह ने एक प्रश्न किया, वह क्या है जिसे सूरज चांद भी नहीं देख सकते। बारी बारी सबसे प्रश्न पूछा गया, सभी दरबारियों ने अपनी अपनी तरह उत्तर दिए। किसी ने बताया खुदा, किसी ने भगवान, तो किसी ने रूह। बादशाह किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाए, सभी के उत्तर गलत थे। अंत में बादशाह ने बीरबल से पूछा, वह विनम्रता के साथ बोले, जिसे सूरज और चांद नहीं देख सकते हैं वह चीज है अंधकार। बादशाह प्रसन्नता से खिल उठे क्योंकि उत्तर सही था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालनपुर आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने मुझे दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वो भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक सिपाही बहुत बलवान था, बहुत बहादुर था, बहुत लड़ने वाला था। उसका घोड़ा भी वैसा ही बलवान, बहादुर और लड़ने का हौसला रखने वाला था। एक दिन सिपाही अपने घोड़े पर बैठकर किसी पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था। अचानक घोड़े का पैर पत्थर से टकराया और उसकी नाल निकल गई। नाल निकल जाने से घोड़े को बहुत कष्ट हुआ और वह लंगड़ाकर चलने लगा। सिपाही ने घोड़े का कष्ट तो समझ लिया, परंतु उसकी विशेष चिंता नहीं की। बस वह उसे सोच में डूबा रहा, नाल बंधवा देगा। इस प्रकार आज कल के चक्कर में दिन निकलते गए, घोड़े का कष्ट दूर न हुआ। अचानक देश पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और राजा की ओर से सिपाही को आज्ञा मिली। अब सिपाही क्या करता? इतना समय ही कहा था कि घोड़े के पैर पर नाल बंधवा पाता, परंतु लड़ाई पर तो जाना ही था, इसलिए वह उसी लंगड़ाते हुए घोड़े पर बैठा और दूसरे सिपाहियों के साथ चल पड़ा। दुर्भाग्यवश घोड़े के दूसरे पैर से भी नाल निकल गई। पहले वह तीन पैर से कुछ चल भी लेता था, परंतु अब तो पैर क्या करता, किसी तरह आगे बढ़ता। देखते देखते शत्रु सामने आ पहुंचे। वे संख्या में इतने अधिक थे कि उनके सामने सिपाही के साथ ठहर भी न सके। वे फौरन अपने अपने घोड़े दौड़ाकर लड़ाई के मैदान से भाग निकले, परंतु वह सिपाही कैसे भागता, उसका लंगड़ा घोड़ा जहां का तहां खड़ा रह गया। सिपाही ने दुख से हाथ मलते हुए कहा, यदि मैं आजकल के चक्कर में न पड़ा रहता तो उसी दिन अपने घोड़े के पैरों में नई नाल बंधवा देता तो आज इस विपत्ति में क्यों फंसता। इसीलिए कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर और जी अंजलि के साथ।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल दीजिए। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख न सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वह टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे और आज सबसे बड़े वैज्ञानिक में उनका नाम लिया जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस मिलूंगी, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ।

0: वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक दिन अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा, हमने न तो अप्सरा देखी है और न चुड़ैल, सिर्फ नाम सुने हैं। बिरबल, क्या तुम इन्हें दिखा सकते हो?
1: जी हाँ, मैं आपको अप्सरा और चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा।
0: कब? बहुत जल्दी, न दिखा सके तो सजा मिलेगी, बादशाह ने कहा। बिरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने विचार किया और एक गरीब कुलीन मेहनती किसान की स्त्री और एक खूबसूरत स्त्री को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर हो गए। बिरबल, यह क्या तमाशा है?
1: हुजूर, यह अप्सरा है और ये चुड़ैल है।
0: क्या बात करते हो, यह सांवली स्त्री अप्सरा है और ये गोरी जो है वह चुड़ैल है? बिरबल की बात सुनकर बादशाह चौंक पड़े। उन्होंने कहा, बिरबल तुम उल्टी बात कह रहे हो, वह सुंदरी तो अप्सरा लगती है।
1: नहीं हुजूर, बिरबल समझाने लगे, यह काली स्त्री साक्षात अप्सरा है जो अपने पति को सच्चे प्यार से आनंदित करती है, और यह चुड़ैल है जो जिस्म फरोशी करती है, लूटती है, इसका धंधा ही ऐसा है। बादशाह को बिरबल का उत्तर तर्क संगत लगा और बादशाह ने बिरबल को इनाम दिया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोद कर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता।

वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उड़ान नहीं भर सकती, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात मान ली। वह मुर्गी की तरह जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हारने के लिए तैयार हुआ था। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमें उत्तर भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9512996688 पर, और या हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, और ईमेल भी कर सकते हैं radiopalampur@gmail.com पर। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर आरजे अंजलि के साथ। एक 20-22 साल का नौजवान सुपरमार्केट में दाखिल हुआ। कुछ खरीदारी कर ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है, मगर उसने अपना शक समझते हुए नज़रअंदाज किया और खरीदारी में मशरूफ हो गया। लेकिन वह औरत लगातार उसका पीछा करती रही। अब की बार उस नौजवान से रहा ना गया, वह अचानक उस औरत की तरफ मुड़ा और पूछा, माँ जी खैरियत है? औरत बोली, बेटा आपकी शक्ल मेरे मरहूम बेटे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मैं ना चाहते हुए भी आपको अपना बेटा समझते हुए आपके पीछे चल पड़ी और आपने मुझे माँ जी कहा तो मेरे दिल के जज्बात और खुशी बयां करने लायक नहीं। औरत ने यह कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। नौजवान कहता है कि कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। वो औरत बोली कि बेटा क्या आप मुझे एक बार फिर माँ जी कहोगे? नौजवान ने ऊंची आवाज में कहा, जी माँ जी। पर उस औरत ने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उसने सुना ही ना हो। नौजवान ने फिर ऊंची आवाज में कहा, माँ जी। औरत ने सुना और नौजवान के दोनों हाथ पकड़कर चूमे, अपनी आंखों से लगाए और रोते हुए वहां से रुखसत हो गई। नौजवान उस मंजर को देखकर अपने आप पर काबू नहीं कर सका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी खरीदारी पूरी करे बगैर ही वापस चला गया। काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने 10,000 का बिल थमा दिया। नौजवान ने पूछा, 10,000 कैसे? कैशियर ने कहा, 800 का बिल आपका है और 9,002 आपकी माँ की है, जिन्हें आप अभी माजी माजी कह रहे थे। वह दिन और आज का दिन नौजवान अपनी असली माँ को भी मौसी कहता है। तो कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा। इसकी शुरुआत और अंत कितने अलग है, नहीं? आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमें आपका प्रतिभाव भेजिए। हमें मेल कीजिए radiopalampur@gmail.com पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

तो श्रोता मित्रों, रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केड़बड़ी मंडल संचालित आप सौनो आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर हूँ आरजे एआर आप सौ माटे दर अठवाडिये लईने आवुं छुं डॉलर बहु नवलकथाना अंशो, जेना लेखिका सुधा मूर्ति ने जेनो गुजराती में अनुवाद सुधा मेहताए कर्यो छे। आ सुंदर नवलकथा अने पारिवारिक अनुभव, विदेशनी गेलछा, बधी ज वातोमांथी तमने पण तमारी आजूबाजूना केटलाक सभ्यो, केटलाक परिवारना सभ्यो, केटलाक अनुभवो, केटलाक मित्रोनी वातो, केटलीक तमारी साथे अत्यारे वहेंचाती वातो याद आवी जती होय तो तमारे ते बधी ज वातोने संग्रह करी तमारा मनमां, तमारा शब्दोमां के तमारा अवाजमां मने मोकली आपवानी छे। आ माटे तमारे माटे अमे एक ऑप्शन एटले के 9512966688 व्हाट्सएपनो ऑप्शन छे। अहीं रेकॉर्ड करीने के तमारो संदेशो टेक्स्ट मेसेजेसथी तमारे मात्र व्हाट्सएप करीने मोकलवानो छे। याद रखो आ नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आ साथ तब अमरा सोशल मीडिया ना कोई पण एकाउंट एट के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के पची एक्स पर रेडियो पालनपुर लखीने आईडी पर तमे तमारा कॉमेंट बॉक्स में

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण

पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है। पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओं, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं. प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन.
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ. उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो. अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए. यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए. इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया. उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की.

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया
0: जी।
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा
0: जी।
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है
0: जी।
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है
0: जी।
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी
0: जी।
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद

0: प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, न कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। हूँ प्रियराज सौ बाळ मित्रों नु स्वागत करू छू बाळ सभा मां।
4: एक कूवो हतो, एमा घणा बधा देड़का रहता हता। तेमा एक गंगदत नामे देड़काओनो राजा हतो। आ कूवामा गंगदतना विरोधी देड़काओनो मोटू जूथ हतु। ए तेना हुकमनो वारंवार अनादर करतु अने तेनु अपमान करतु हतु। कूवामा रेंट चालतो हतो। एक दिवस गंगदत आ रेंटना घड़ा पर चढ़ीने कूदतो कूदतो कूवानी बहार निकली गयो। ए थोड़े दूर गयो त्यां एने एक काला सापने दरमा प्रवेशतो जोयो। मेंढकराज गंगदते विचार्यू, आ साप जोड़े हूँ मित्रता करीने एने कूवामां लई जाऊं अने एना वड़े मारा दुश्मन देड़काओनो नाश कराऊं। गंगदत तरत ज सापना दर पासे गयो अने सापने पोताना दुश्मनोने मारी खावा माटे कूवामां आववा विनंती करी। सापे विचार्यू, घड़पणमां बैठा बैठा पेट भरवानी आ उत्तम तक छे, ते केम जवा देवाय। तेणे गंगदत ने कह्युं, मेंढकराज हूँ तमारी विनंतीनो स्वीकार करूँ छूँ अने तमने मदद करवा तैयार छूँ। गंगदत्ते कह्युं, सर्पराज तमे मित्र थया इटले तमारे मारा वेरी देड़काओने ज खावा, पण मारा कुटुंबीओ अने सागरितोने जराय हाथ न लगाड़वो। साप सहमत थयो इटले गंगदत्त रेट मार्फते सापने कूवामां लई आव्यो। सापे कूवामां पाणीनी अड़ोअड़ आवेली बखोलमां जग्या लीधी। गंगदत्त हवे पोताना जे वेरी देड़काने बतावे तेने साप मारीने खाई जतो। एम करता गंगदत्तना बधा ज वेरी देड़काओनो नाश थई गयो। हवे गंगदत्ते कह्युं, सर्पराज तमे मित्र धर्म बजाव्यो ए माटे आभार, हवे तमे कूवामांथी निकळी तमारा दरमां जईने रहो। साप गुस्से થઈને બોલ્યો, હવે હું ત્યાં શી રીતે જાઉં? અત્યાર સુધીમાં તો કોઈ બીજાએ મારા દર પર કબજો કરી લીધો હશે, તારે મને રોજ એક દેડકો ભોજન માટે આપવો પડશે।

पक्का पालनपुरी न्यू ओल के ट्यून रहे मस्त रहे सामल दूर रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

शहर नो अवाज एटले 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता आणि विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतो एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM.

रेडियो स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवड़ी मंडल संचालित आ रेडियो स्टेशन पर तमारा प्रतिभाओ तमारा संदेशाओ अने तमारी वातों ने मोकली आपवा माटे तमे 90.4 FM रेडियो पालनपुर ना फेसबुक पेज पर जई शको छो अने तमारी वात ने त्यां पोस्ट करी शको छो। साथे साथे तमे अमने व्हाट्सएप पण करी शको छो। रेडियो पालनपुर पर तमारी वात ने पहोंचाड़वा माटे व्हाट्सएप नंबर छे 9512688 9512996688। ફરી એકવાર નંબર હું તમને જણાવું છું 9512996688 પર તમારા સંદેશાઓ અને પ્રતિભાવો મોકલી આપો પાલનપુરનો એકમાત્ર અવાજ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર। मस्त रहो, व्यस्त रहो, सामर्दा रहो। 90.4 FM रेडियो पालनपुर।